स्वर बल बहादुर वाइबा प्रतिमा अरियाल, शब्द लय बल बहादुर वाइबा। बल बहादुर वाइबा युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला।

नमस्कार, म विभव, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सुन्दैछु। तपाईँ पनि सुन्नुहोस् है।

स्वर बैरागी च्याङबा, जितु लोप्छन। सङ्गीत प्रेम योञ्जन तामाङ। शब्द सरिता दोङ, बैरागी च्याङबा। प्रोड्युसर किरण तामाङ, सरिता दोङ। एरेन्ज मिक्सिङ सानुबाबु घिसिङ। किरण स्याङ्गो युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।

स्वर बल बहादुर वाइबा प्रतिमा अरियाल, शब्द लय बल बहादुर वाइबा। बल बहादुर वाइबा युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला।

जाए वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।